सूचनामा डब्ल्युएचओको कथन। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट डेभिड नाभारोलाई श्रद्धाञ्जली। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट औषधि फिर्ता। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन्क संयुक्त राज्य अमेरिकाले एजेलेइक एसिड जेल 15% 50 ग्राम ट्युबहरू सामयिक प्रयोगको लागि मात्र आरएक्स मात्र द्वारा वितरित। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता बोलाइरहेको छ। कारण सिजिएमपी विचलन, असामान्य बनावट वा स्थिरता, दानादार, घिर्किरा।

विश्वका महानिर्देशक जोर्डनको भ्रमणमा। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको फिर्ताको सूचनामा डब्ल्युएचओको कथन। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट डेभिड नाभारोलाई श्रद्धाञ्जली। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट औषधि फिर्ता। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन्क संयुक्त राज्य अमेरिकाले एजेलेइक एसिड जेल 15% 50 ग्राम ट्युबहरू सामयिक प्रयोगको लागि मात्र आरएक्स मात्र द्वारा वितरित। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल

लागि मात्र आरएक्स मात्र द्वारा वितरित ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता बोलाइरहेको छ। कारण सिजिएमपी विचलन असामान्य बनावट वा स्थिरता दानादार किर्किरा वा बलौट

राज्य अमेरिकाको फिर्ताको सूचनामा डब्ल्युएचओको कथन। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट डेभिड नाभारोलाई श्रद्धाञ्जली। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट औषधि फिर्ता। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन्क।

डेभिड नाभारोलाई श्रद्धाञ्जली। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनबाट औषधि फिर्ता। ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन्क संयुक्त राज्य अमेरिकाले एजेलेइक एसिड जेल 15% 50 ग्राम ड्युबहरू सामयिक प्रयोगको लागि मात्र आरएक्स मात्र द्वारा वितरित ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स इन्क संयुक्त राज्य अमेरिका फिर्ता बोलाइरहेको छ। कारण सिजिएमपी विचलन, असामान्य बनावट वा स्थिरता।